0: बाजी तोर बाजा आ गए मुटीगंज के राजा।
1: ए बेटा, तुम्हारी हैसियत के डीजे

से हरि गोविंद बाबा हाई टेक सामने से हट जाइए, अब मैं डीजे पे कदम रखने वाला हूँ।